0: की जय हो।
1: स्वामी बारहवन जी भगवान की जय हो। बड़ी गुरु श्री देव नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी वर्षन जी गुरुदेव की
2: जय।
1: Meaning is, my love is connected or directed to lotus feet of Gurudev. Nothing else makes me more happy than that.

0: महाठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिया कर डोले द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज वेरी स्वीट वेरी हम्बल हाउ टू कैच यू एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स। सो दिस माया दिस संसारास देयरफॉर इट इज सेड पतन और उथन दो बोथ हैज बीन सॉन्ड। सो भगवान विष्णु सेठ लक्ष्मी देवी गॉडेस लेट्स गो बैक टू अवर वैकुंठा दैट इज मच बेटर सम टाइम टू टाइम नो नारदा कम्स दैट्स ऑल एंड सो केम देयर एंड दे वेंट सो बट बोथ वन सीड सो द रूट्स आर इन वन बट वाट इज प्राउड केम आउट वन इज दिस एंड दैट सो वाट इज दैट वन वन इज कॉल्ड संघ संघ मीन्स द कंपनी कंपनी ना विच काइंड ऑफ कंपनी यू हैव नेगेटिव वे और स्पिरिचुअल पॉजिटिव वे नाउ दिस इज कॉल्ड ओनली वन वर्ड संघ नाउ इन द वन वर्ड वन लेटर संघ नाउ बिफोर संघ इफ यू राइट सत वाट बिकम्स सत्संग एंड इफ इंस्टेंट ऑफ द सत यू राइट कु What happens? Kusanga, bad societies. So root is there, but how now the branches will develop this side or that side? So in the Kali Yuga is a very, very hard, difficult to get good Sangha. There is a lot of sweet words, there are a lot of tricks, but at end there will be nothing. So this one bhajan was Mahaprabhuji's, then I will not translate all, otherwise morning I have to serve you breakfast here.
1: Yeah, you miss your plane.
0: So therefore, sir,

सत्संग ओ सज्जन वाली लागे ओ सदाई सत्संग। ओ माय डियर वन, ओ माय फ्रेंड्स, आई लव सत्संग। श्रुति और स्मृति गावे, श्रुति व्हाट इज स्पोकन, स्मृति व्हाट इज इन मेमोरी। दिस इज फ्रॉम वेदास, श्रुति स्मृति, श्रोता श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय। दिस मेनी डेफिनेशन आई विल टेल यू।

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

0: या भी
1: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om. There are different centers.
0: Vannak különböző központok.

गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम् ओम शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की, पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेस्ड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स भक्तास डियर वंस राउंड द वर्ल्ड दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत जाडन राजस्थान पाली फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज। द स्कूल्स द कॉलेज एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only

taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. Takshila kaun se desh mein tha? Bharat mein. First university was in India, Takshila. Many, many things. So, okay, let's go further. In our Gurukul, Om Sri Vishwadeep Gurukul, where the students are studying from the nursery school, primary school, middle school, high school, and college. In this area of Rajasthan, we have one project, and many of you know, it's called Gyan Putra. Our Gurukul adopts the students, the children, as a Manas Putra. Ek to Manas Putra hota hai, jisko hamari putra ke saman aadar karte hain, pyar karte hain, samajhte hain. Aur wohi chahe aap Manas Putra kaho ya Gyan Putra. Kyunki father ka, baap ka, maa baap ka faraj hota hai ki santan ko shiksha dein, because the parents are they who give the education to their children. Now, according to the Indian education, the time the school begins from 1st of July. So now our students are coming. But dear ones, you can see many of our Gyan Putra, our students in our hostel still coming, and you see them in the Pitambar dress, Pitambar like gold. And Bhagwan Krishna used to have Pitambar. And this Pitambar is a color of the flame of the fire. So, the Vidyarthi, they are studying. They should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress. And this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural traditions, ethics, morals and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul,
We have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, हमें तो ज्ञानार्जन करना है, पैसे की बात नहीं करनी है, हम पढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि वो पैसे जो हैं, जो तुम सोचते हो, वो तुम्हारी विद्या के अंदर हैं, और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है ये, इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गांव, मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा। बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो। ले एक महीना रहा 15 लाख, अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं, 15 लाख रुपया उठा सकते हम? अरे बहुत, तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है। 15 करोड़ तो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ, और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, the language, the first language what we call is Sanskrit is the mother of all the languages around the world, maybe 2-3 not. Everywhere there is the words of the Sanskrit language in many countries. And also the culture goes from the Bharat. All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia is also where the South Indians, which we call the Aborigines. So, Aborigines ke andar वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है, साउथ इंडिया का है। तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में, और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज ए माउंट कैलाश, और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ? स्वयंभू शिव। आगे वापस वहीं के नहीं, इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं, सब कुछ है अपने देश के अंदर में। और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है। चंदन है मेरे देश की मिट्टी,
तपोभूमि हर ग्राम है, हर

of all population lives in villages. Of course, this is changing, but population, as you know, in India is huge, as I told in the beginning. So we are, Swamiji, trying very hard. It's, of course, very difficult because everybody wants to have computers, everybody wants to study, to have experiments with the chemistry or physics and so on. So this is quite, of course, it's a costly matter to pay to the teachers. If you have good teachers, they require more money. If you have good equipment, this requires money and so on. So that's why we are thankful to all the supporters, all the donators who gave the money for this project of Gyanputra. अब आपके पास अब स्कूल में जाते हैं आप स्कूल का समय हो गया चालू भी हो गए आप मैंने आपके सामने बैठ रहे तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं एक जगह में बैठ नहीं सकते नींद तो आती रहती है अभी तो 9 बज गए तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है यहाँ का प्रॉब्लम है जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है एग्जाम तो आएगा दिसंबर में जब एग्जाम आएगा मार्च में एग्जाम आएगा अप्रैल में अभी क्या स्टडी कर तो आप ऐसे कीजिए 365 दिन है अब आज 6 महीने के लिए खा लेना एक दिन में 4 रोटी आप लेते ठीक है सुबह 2 शाम को 2 ठीक है मान के चलो 5 रहते 6 लेते तो 6 महीने में कितना दिन होगा 180 दिन 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना 900 रोटी तो ठीक है आज सुबह हम बना देंगे भंडारा 900 रोटी सबको खानी है फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से संभव है इतनी मामूली चीज है अब क्या है 900 रोटी खा लीजिए क्या है कोई खास नहीं है 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी ऐसे नहीं चलता है ना तो अगर ऐसे नहीं चाहते आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं पूरी 6 महीने की पढ़ाई कर सकते हैं एक रात में वो एक रात भी नहीं 2 घंटे में अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में 11 बजे समाप्त सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे संभव है या नहीं बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल तो पढ़ना होता है रोज डेली तो बड़ाई टुकड़ों में होता है जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं हर दिन 5 रोटी खा सकते कोई टेंशन नहीं 10 रोटी भी खा सकते हैं लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते हैं 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा तो 6 महीना कितना हो गया घंटा 180 तो हो गया नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं 1 घंटा कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते तो कोई टेंशन नहीं है तो आपकी मार्क्स जो आएंगे आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी आपकी जो आईएएस आईपीएस बनना है सब बन सकते हैं लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा असंभव इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते
यहाँ कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहाँ भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहाँ क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना? क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो। जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा, और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते? कम से कम कोई तो मार्क्स आए। अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे? अरे मेरा बेटा 95% आ गया। अभी है कोई यहाँ 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से एक दो तीन दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो not only that we have a Gyanputra program here, we have also our with the blessings of our Gurudev, we have yoga programs here, and we have many our students from west who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends, and learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata and other Upanishads. So definitely we are open university, we are open school. Of course, it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwa Guruji, Vishwa Guru Swami Maheshwaran Puriji Maharaj, who gave us this opportunity, who gave us this ashram and this possibility to study Indian culture, to study the yoga, and to study old ancient traditions. With these words, I would like to finish. And I would still like to thank to all of you who came. I would like to thank to all of you who are donating and who wants to donate either by your work and so on. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu ma

कैमरा साइट, मुंह देखो दूसरे लोग नहीं. ऑल द विद्यार्थी टर्न टू द, डोंट गो क्लोज टू द, फिर चेहरा नहीं दिखेगा बेटा. तू इधर आजा, खड़ा हो जा. बस बेटा यहीं खड़े होके दे, या नजदीक आ जा बस. Okay, we will see if when is. Devishwar Mahadev ki jai, Alakpuri ji Mahadev ki jai, Hindu Dharam Sambrat Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki jai, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की,

निर्मा ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो इस कैमरा में, देखो दिख रहे हो तुम लोग, तुम दिख रहे हो पीछे खड़े हो, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद। दिख रहे हैं सभी के? नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊँगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।

0: शांति शांति शांति।
1: विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

0: शक्तिशाली चतुर्विहो सद्गुरु भगवान की जय। पाजीपति विश्वनाथ नित्य प्रति सर्व प्रकार से बड़ी उच्च वृत्ति से विशुद्ध वृत्ति से जो उसी ब्रह्म रूप में लिपायमान रहते हैं उन महान सद्गुरु देव के चरणार विंद में कोटि शत नमस्कार करके ये जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति गोति सह सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सो हम स्वाहा। ओम ह्यम हम सह सो हम स्वाहा। सर्वर्ते सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देव कर रहा हूँ वो हमारे सारे मनोरथ को सिद्ध करे। ओम अग्नेर वाक्मंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा। ओम अग्नेर वाक्मंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा। ओम अग्नेर वाक्मंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिबस्वाहा। ओम ह्रीं ऐं त्रैलोक्य मोहिनी चामुंडा महादेवी सुरासुर वंदनी ह्रीं ऐं स्वाहा। ओम क्लीं कानेन्दी भेदनाय ओमैर्वाक्मंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिब स्वाहा। ओम अग्नैर्वाक्मंसि यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिब स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेदेन जुष्टा सोमम पिब स्वाहा। परानं महाकालकालं कृपानं गुणांगार संसार
1: पार्वती पदे हर महादेव।
0: दुसराजि संपात गौरं गंभीरं
1: नमः पार्वती पदे हर
2: भगवान की जय।
3: भगवान की जय।

ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम। दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख